आकाश बानी इम्फाल ngasi सगोल से नुमित इंगेन की तरह तरुक निपान बा सकाप्त लिसिंग मचमापन निफु निपान जुलाई की तांग कुंट्रा इंग लिसिंग निकुन तरुक हौजिगयुक की पोंग मंगा मखाई ता खिबग लोइनना संगाई चैनल की थोरम परेंग संदुक बा हौचरी संदुक चरीबा मेगाहर्ट्ज चा महुम दशमिक मंगा थोरम ताबी रिबा पुमनमकपु इकाई खुमना चबग लोइनना तराम ने ओकचरी

ngase muk puduna lakchari si dehida ki thauram asida haikruna miyoi bade piriba kanabasing ekhoi puna khangminasi haikru asi isorna miyoi bagi damakta pirakpa kanaraba pambi makhalamani pambi asi manipur gi mafam ayam bada howi bharat ki mafam khara dadi tulsi gumna puja su taunai haikru charaga hakchang yangi haikru charaga chaning thakning ba pokhalli amasung puk chakpa obathingi pukta nungsit kaba khong hamba amang ba yai khatpa asina chingbada kanahali yamna ing ba meng ba maramna khaurang ba amasung hakchang sagatpa chakpa phahali humang thokhali ba amadi laiho amasung laiho ki chakpa phan batana tana अतेक अकाईगी सरू सौजिन हनबदा मतेंग पांगे मरम असिना हैक्रो असि हैपुमना मक्तगी ख्वाइदगी हेना काना बहाई मखल अमनी हैक्रो ना लैना कया मुक्ता काना हली करिगुंबा लमथाप न चलक पदा चा बथक प फंगद्र बदा हैक्रो अहु मरी दंग चार बदी हकचांग तेखत प मसुंग आराम खौरांग ब फहली हैक्रो ना ई सेंगदो खली फंबी फहली अमसुंग इसिंग मरीदा फहन बतना तना नुपीगि अंगांग लैफमगि अनाबदा फहनबदशु मतेंग पांगि हाइ पुमनामकतगि विटामिन सी याउबा हैक्रुना ख्वाइदगि हेले हैक्रुदा अयाक पमहाउ नत्तबा अतै महाउ पुमनामक याउइ मसिना थबाकि अनाबसु फहले इसिंग लितर मखा

0: अभियानगी अखन्नब आउटरीच प्रोग्राम पांगथोक्किबगी पाउना सेनापति फोंगब हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस की अहानब हेडलाइन ओइरी किरण
1: थागचरी बिरोस अरोइबद मरु यो पाउ अमुहन्ना मुख्यमंत्री योनाम ख्यामसाना इम्फाल जिरेबाम लंबी की ट्रांसपोर्टर सिंह मिहुर चिंगौनोदना लंबी परिंग असिदा सोयंगाम याउदन सथोक चसिन तौनोबगी मतांग द खनेक्रे यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री गोविंदास कौंथोक जमना हायरी साइको मीराबाई चानू ना ग्लास्को कॉमनवेल्थ गेम्स हंडक सौनो माइ पाकिबसिना राज्यसिक नुपी मसासिंदा असौब इनोटम पीरगनी अमसुंग केंद्र की पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजू ना हायरी गृह मंत्री नत्रगा अतई मंत्री अमतना नोमई कापनना हुकुम पीखिबलाइते पाउलोजरे

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: गीत के अरोई बखुदोल दा लांथोक चरी हनी सिंह दगी गीत।

1: ตาจะลูรีอ่าถ้าบอกชุดตัวเดรยุ่นบ้านประชุมครั้งเดียวดีชีบตาแบบนี้นะเฮ้ยตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตา
0: 강의 노마이징네 카브라 바품 내기
1: 강의 노마이징 아께 와나테 나랑 야오키바네 다이렉트 IAS 사히 우파라바 하나소 아루나살 데레람바네 나한 게 카브라 바드르소 에코기 컨선 오피사르 모 오이도리네 카마 파이하이브니다 노제
0: 그 이유네 항니드나 성카 호이다 파르가 하비레이싱아이 응가리노 아마네
1: 로레 로레
0: 로레 로레 야오라수 성카이나 좀 담내이둥아이
1: 다버도 부이비마 나 코이세 타바마 타오리 비에네 खबर पानिंग दे रेडियो टीवी पाव टानिंग दे होटल द कैथेल द फंबिए लरे हई तबना खरे खरे सेम दोरक पा सेम जिल लको पाव गो पाव ओइले हेक नंगने मिनो जे नंगने नंगने
2: होके हेने बिन संखा दो हयिंग
0: सिबो बन्नी
1: हयने सु ओ इबे मा दुनी अदु दने एकोइन सावगिंग से सावरी से
0: कुरी नो
1: हति नरांग दिनु माइजिंग हे हायरे यारे फरे नसी दि ऑफिस द खबर लई रेदना लागबुग मिनिन मंगा द सुमयिंग बियो के दोगे कलान क उबन करी की कौरी नो तांग के आगे पुंग के आगे की तांग के आगे पुंग के आ पाव गो नो बा
0: अदु हयिंग सिबु चुम चुम बराबे बन्ने हसिबु
1: ओ इबे मा से गाडी खैदने
0: ओ
1: मि सत पयाय कथेल हांगनी रिक्सो तकनी सिबु कैनो
0: स्कूटर सकानी पान बादी सत पया बजा लो
1: आ हंगु हंगु आ
2: खबर सिसु अदुनी सेंग ना हगे मखुजु छोइ दैबि मो
0: ओ अदुना बु पाहादरी ने तसाउबा
1: गाडी खबर नो याम सेंग ने यहोबुनीदा फोर व्हीलर सत पया दे टू व्हीलर सत पयाय
0: टू व्हीलर सो अदुम कीदना सत ना रोयदा
1: कदु की दुइनो
0: कनान करी की कौरी बन्नुइ मि
1: हायरो हायरो ए सोवाई हायरो को
0: तो हायदो ता चाउबा
1: हाउ
0: खबर दोम द सोम द प्लीज पाकोन जिजे बनते को
2: ए कदा दिगी पाकोन सिबो होगे दिगी ने थौदा बनी ने करिसु काई दिगी ता
0: चाउबा
2: सिबो काई दिगी सुकाई दिगी से से लोबी लोबी
1: तेनो के हे लाई लाई सिकरानो सिरो
2: समका आदर लाई छे अखुई ऑफिसर में औ तो उपीर चोबा
1: होय होय जे ओ के कनु ओ पे बके नो ता चाउ जे द लाउ के
2: ला सी इबो मंग था
1: अखुई थोसे लाउ
2: मंग था अब यानी यानी लेम बी लेम बी लेम बी
3: ma asiro nimile yotani
4: ma ma mindu bukari hai ba
3: srinivas srinivas
4: srinivas
3: ai
4: koidi ma se tompo haraga khangni
3: na nanga khangna bro
4: khangna badana te wari leida
3: wari leya ba
4: siwariya phibam masaka dikara olame na halwai di makla sang sang adana lep sang hoine tau khibani ba mamai ga se uri nga ta ai koina ma se mi maram haide lakne krini hujik dikara bu phajara mine
3: सुमु सुम लबरने मानबो वेरमती
4: मानब नते आइने खंगबले कुइने सही तरह मंगा कुनमु उनखिदब नते
3: ओ
4: सही तरु तरि मुतनी उनखिदब अदो ओपिसानी ने लाइसेदी नपुंगे इने नहलवाईती मी मालम दबनी मासे होसेती मी माले अस आइने इये सही ता
3: मेरे भाई बसे फजना से चारगा वकल नुआरगा खरा दिया दम फजर पनी आईएस पिरा पकाई से पासलोलती याउद्रदी यापोते नहलवागी वादी खंगदे हौजिक चंखिबदती थाजैना
2: आ सा नैबु बमुक चंबी होये आई भोदा सोबा होय होय यारे यारे लाके
4: आई के कौशला दियो थोंग तलानी दे सैता
3: वाई ले हाइदो काई नु लियोबा
4: लियुरो
3: लियो
4: इम्फाल कॉलेज दमासे एकोई देगी क्लास अनी मुहाले एकोई मनाक तलेबा तामु बहाइबा अमगमागा यामना लुने तिनरमे महाग नै पुपा ममे महाग से कॉलेज तम बसु लारिक तम दबा मालमे यामना औसना रमे अदुगा यामना सुपक्ति
2: ओ मेय थंगबी ओ मेय थंगबी नोमना रासिलेबी ए मेय थंगबी नंगुनी ने नोमना रासिलेबी सरक के जबोई साबी मु फजाई को आई सांगलो रे मबो
0: उपो पदहराउ द बस हिब द कमिंग द बो खुदी एन उपग समझिन न लंबने
2: नुंगा इदिरे द सैता भालो है मर मु इने करी मे थेलांग मी
0: सिगि दे द सैता
2: करी मे थिन थोंगम के करी सांग थोंगम केर का
0: ओ रासी याउ द बस दाति ब थोंगम बने

0: मतुंगी दी हम खिद्रे हादे है कॉलेज भी दादा चत खिद्रे लंबाग तो फाउ खिद्रे खुद दुहाई ला खिद्रे लंबी लंखांग आईबूम इनरपू तौ खिद्रे इकाइब सौनिब माले तामूबग इपानुपागू कौनखिद्रे
1: कॉलेज नौनखिद्रे
0: थेनखिद्रे हांगलुदे माने दिल्ली एम ए तब चलद हयें चलनी तामूब लामेन है चत्ब तामूबग थेने तामूबना तौ
2: नंबु करी तमुदोइनो
3: हा अफंगबमा
2: अई मोचे दि चलनंगदे सुआइरो सुम तमने
3: कैगिनो
2: तसिंग नहारबदि नो नंगि फिफम याम फतिने नंगि दम कनाना पिसा थाबिरकनी
3: नंग हारिदु चमदबनते अदु अमुबा अई अई सुआइ द सुलै लिनिन दिने बाय सिमागु उनदना बहोनबद अयम बवारे
2: मा उरग कैदोगे माय वखल खलनु कानरोई
3: कानररोई बुदि खंगि अदु नुसीबदी सम सम हेंगलैब
2: खल नंग चतुरीद लोनने इमान वहद इमा नंगद अभी सुरुकुदेने थब तौसलो येंगो यू पाब तौर से इमा की सेवा तौनब नंगना
3: चतना इचे हई इबाई हई लाचनीद अमुब नुपाने निबी हों खल
2: नुपा फनु फीब मैम से खलुने कई लेतेम लंफद चेन हौनदे मागी ममांगदने मंगोदी हेनम कनानोम लुहोंग लोरे
3: मदुगी वांगाक्त सुनतिदा अइने खनबम सुलै इंगसिदि हायरोय हयिंग तुंगद करिगुंबा माय पाब मतमद खंगरासि
2: अदु वादि आइसु खंगद्रे
3: सिदि स्वयदलाक परोय बनु मिसिदि हिदा रावन त पाइनिगिदा
2: तोरनु नौसनरनु को नानमु यु थलगलाक पदि थोखिबो थौदोदो अदुरगिनि तारै इबा फिमा म्यामसि
3: फरेसे थारो भाई अरब नुदाद मागी मसक तु हाइपे तंग उब फंगबदी माग थुंगनब मु पेंजगदबनी हमबा नंग भाई उपाय अंतंग तौदना होजिक्सी मा अंतंग उहनबंगमोयद्रा भाई
2: फरक की वादो हायरानु होजिक उदांग पुमा पल ताक्रमने मबु उमा पाव म्यामदि मरकतुदा
3: फरे जारे भाई अदो एना लंगफैद सखरकांद मागी फोटो अंतंग दि थाबिरो को
2: होय अदु फावदे सु येंगे
3: कैनो कई लेतेब थारे को हर लोर ये गायन थैदू करो
2: करीब तौदनो फोटोदना
3: हो नगोद अत मफम कई लेते नुसीबासी कई
2: लेनेदेनतेद
3: संसार से खजब फाबद खाईदीजब खाई फजब पोसकम है सीमाने भाई पुनमगनी मसान याद इटिंग लिंग से फुदोफम लेतेबाने
2: वरीदी
3: खाई कीजब खाई इकाय खुमजब मिसको मारे
2: कई नंगे हाँ येलुरे
3: कयाद इतोमत इकाजर नुसुरते वहानक्रे भाई नोम तंजा साब नंगी फोर लाले खराबी
2: फर ठीक चलो कानी को
3: चतबूदी ताबने मह से इबानी की मरी कहीं खे कहो मब सुरुरी खे नोनीदर माले करीगमद लंफैदी थोरपद यूसीद लेरमरको
2: लेरमदे से पैसा लौसलू यामदबनी मतें मतें होनब
3: ओ थैंक यू भाई चतरीने तौर से पैसा यौपोटेद
2: फर थे भाई चलब तौर से
3: कौगे अहकती फमगीगे कना खब नंग उब अरब यूसीद लापू अरब ngasi mag unaba pangaroi. Pare bhai, ai chalake.
2: Pare, ai tin toke, chalo.

खुदोलगेनी सुबुदों लुकुचरी अखुनबमनी फिल्म सिदगी पुष्परानी की नाइटम खोंजलदा नरेंद्र निगोंबना सेरिंगबमदी तोंब थांगचमना सेरांगबा इसेनी तामिनसी

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो,
1: गुड आफ्टरनून सर।
0: गुड आफ्टरनून। तरह नुक चली कनाव बिर बनो मिंग हम तो खुद
1: यम
0: जगे
1: सिफाई थे कि आसम अंगो विने सा
0: नोबी कई दो बिर मिनो अंगो किसे से।
1: आज से सागी प्रोग्राम जे साई ताजर मने
0: फनी फनी तो थोरन खुद की
1: आज
0: थोरन सिस
1: साई
0: दे
1: वापम हम तो फोन तो
0: ताफियो
1: सके को
0: ताफियो गाइस एरी बनी
1: आखु की मुपा सिंह यू था गन तियांग दे सुन ओती बा ने भी बे जाम ततन थिंग से मुपा सिंह से खजा ज्ञान तार गदी थवा दो बुआ यू जे यन बि जा गदी इमु मनु खाना बे से सुन तो सिना पाए ता सी तो हम जे निंगे ना हाई जे निंग बसा
0: होय फागद बे लंबी दनी को हाय खोना अंगो बिना तकबीर बे से होय होय
1: आदुका ममाज ने दी आम न मुझे फान ब कयानी होना बसी दा मैना ममाज उस दी दा ब कयाय मा नांग वे लौ दा बा थौय लक दा बा म सुम याम उज बा आइ ता सी अपो पी मा न कोई जे फान नि जी गा अ कोई तो इ जी गा हा यो ग दी ज्ञान ता प या रे मुझे को सा तो गा ने ज्ञान ता प ना रे ममाज जे आ ज बा आइ ता म सा जिंगी
0: होय होय ममा मना पिसक पिकिंग ए दगी मचा म बुचाउ न न ब होन रक प हाइ ब मतम सि दा थादख्रीबा मतमगी थोदोकपा थमद्रगा होनख्रीबा अदुगत मखोइद थमिबा नुक्षीबा के आदवान होनरैबनिबको होय
1: होय सा
0: पानी पानी अदुदि
1: आरो यु प्रोग्राम जिन तिगी आम नुवाय ताजरी आय तारे
0: होय होय खोगी थोरम बुसु नुवाय न ता बिरम बथागा चरी अदुदि मथंगी कोलम नुवाय न रसे पानी पानी अदुम बुसु थागा चरी मरक्सिदा मयांग विकोल गाइजे बोइना इसे मखक खुदोल दमजके पुनतामिनसी

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, बेटा
0: गुड
1: क्या
0: आफ्टरनून तारामुक चरी मिंग अम्तंग खंगजगे
1: तमीरा
0: ताजरे ताजरे मिंग अम्तंग खंगजगे हेलो
1: बेटा
0: करी है बीबा मुक्का ताक बीबा
1: खांगद
0: वारो बीबे आदे मुक्तंगा हाई बीबा मखोल से कितंग मैं एक शंपा

ये आकाशवाणी इम्फाल का शांघाई चैनल है। 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाईकोम सिंघेगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है सदाबहार गीत। समय सीमा से परे हरदम ताज़ा ये वो गीत है। सुनते हैं पहला गीत 1972 में आई फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। गीतकार है संतोष आनंद और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म अभिमान से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत सचिन देव बर्मन का।

अभी आपने सुना फिल्म वो कौन थी से लता मंगेशकर का गाया गीत। गीतकार है राजा मेहंदी अली खान और संगीत मदन मोहन का। साथियों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के शंघाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनते हैं फिल्म चोर मचाए शोर से किशोर कुमार का गाया गीत, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म कश्मीर की कली से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार है HS बिहारी और संगीत OP नैयर का।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म गायत से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीतकार है शैलेंद्र और संगीत सचिन देव बर्मन का।

साथियों, इस गीत के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए हाजिर है लाइश्रम भीमो। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी इंफाल गंगबो मानथोय ने पाव पाजरी मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना सभापति ओइदुनांगसि मणिपुर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की तरह मंगा सुबह गवर्निंग बॉडी की मिफम पांगथोखरे मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीत सेंटर असि की सीनियर ऑफिसियल सिंगल लोइनना पांगथोखिबा मिफम अदुदा मरु ओइबा टेक्निकल प्रोग्राम सिंग GIS अमसुंग रिमोट सेंसिंग की थौरांग सिंग अमसुंग लेंगाक सासन अमदि प्लानिंग दे हेना कुदुंग चाहनबा डेवलपमेंटल मैपिंग की मतांग दे कुपने यंगसिंखि मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की मीडिया रिसोर्स सेंटर ने सिंधुना मणिपुर मायोक नरीब क्लाइमेट चेंज ने थोखन फिवम सिंह की मतांग आकाशवाणी इम्फाल खना नई की थौरम पांथोखरे आकाशवाणी इम्फाल की ऑडिटोरियम पांथोखिब थौरम एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज विभाग की डिरेक्टर डॉक्टर तौरांगबम ब्रजकुमार ना पैटर्न एंड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट चेंजेस इन मणिपुर है हिरम वाखी मांगना मालेम से तुंगी मिरोल नुगाइन लेहब यानबी एक पुनः हों की तंगाईफदब अनौब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मीपुम खुद खामीन अकोब की फिवम कहनदनब होनासी आकाशवाणी इम्फाल की प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव नोथोबम रोमाना क्लाइमेट चेंज एंड रेडियो है हिरम वाखी थौरम आकाशवाणी इम्फाल की स्टाफ सिंह एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की मीडिया रिसोर्स सेंटर की स्टाफ सिंह सरुक याखी इंडिया मेट डिपार्टमेंट इम्फाल सेंटर ने हाई मणिपुर की जिला अयाद चुगनी विभाग इम्फाल रीजनल सेंटर की पाव मतंग तमेंलोंग सेनापति कांगपोपी उख्रुल जिरीबाम नोने चांदेल सुरसानपुर फेरजोल की मौम क्या अखा अरग लोन चुगनी फिवम से लाब नुमी अहोंब लेर चाम कुंथ्रा मंगा सुब इंडियन ऑयल दुरान कप इम्फाल लेक की मैच एफ सी रेंगदाइगा इंडियन नेवी फुटबॉल टीम सानगनी इम्फाल की खुमल नंपाक मैन स्टेडियम ग्रुप डी की सानगदब मैच नुंथेल पुंग मरीदगी हौगनी ग्रुप बी की अतोप मैच कोलकाता की विवेकानंद युव भारती क्रीरंगन स्टेडियम समलेश्वरी स्पोर्टिंग बागपत एफ सी की निदान पुंग तरह ताब सानगनी इम्फाल की खुमल नंपाक मैन स्टेडियम मथंथागी अहुम मंगा मापन तरानीथ सानगदरीब चाम कुंथ्रा मंगा सुब दुरान कप लिसिंगनी कुंतरुक की मैच आकाशवाणी इम्फाल संगाई चैनल लाइव कमेंटरी तौदन संदोकनी नीट परीक्षा की मरी लेना पुलिस ने खोज चंसी महरों का हेन थी चतकी विरोधी दल से खोज चंसीदों चरांगना थोहलपी लोकसभा की मीफम नुथेल पुंग अनी सभा की मीफम हेक अध्यक्ष ओम बिरला ग्लासगोद चतरीब कुलुमदुब कमनवेल्थ गेम्स सना की तकमान फंगलक्की पेरा एथलीट दिलीप गबीद नुपा की 100 मीटर रेस लुपा की तकमान फंगलक मोहम्मद बासिल थागरप फोंदी श्री बिरला जाति की मिंगे पुरखीब सानरों को थागरप फोंदी तुंग अध्यक्षना वहां पहुंग लौटना होनरप विरोधी सदस्य नीट परीक्षा की मरी लेना खोज चंसी महरों पुलिस ने का हेन थौ चतकी यानीब फोंदना खोलाव क्या लाखी विरोधी सदस्य सभा गृह मंत्री अमित शाह हिरम से वो थम तकसी अध्यक्षना हंजन हंजन सभा की मीफम निथे चतनब सदस्य खाखी अदम चरांगना फिवम लेबदी सभा की मीफम नुथेल पुंग अनी राज्य सभा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल कुंतरुक पास तौनब खनरी लंच सभा की मीफम अमुक हन फंब हौबद पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस पेंशन्स की राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बिल अदु मूव तौखी सभा की चेयरमैन सी पी राधा कृष्णन बिल खननबगीदम सभा पुंग तरह की मत कईथोले आईन से मखाद मरा लेब चाही तरह फाउब जेल थम्ब लुपा कोटी तरह फाउब फाइन थीहब मरा लेब मई मरल मथु मतप यौना तोान तोान वफम क्या यौरी हिरम सिंह मरी लेना केस लोसनबगीदम राज्य यूनियन टेरीटोरी अखनब फास्ट ट्रैक कोर्ट खुद की विचार चतब वफम यौरी बिहार गुजरात मध्य प्रदेश की विधानसभा केंद्र अहम की मर की मिखलगीदमरी इलेक्शन कमीशन की पाव मतंग इना पटना की बानकीपुर विधानसभा केंद्र नुथेल पुंग फाउब वोथदी चांग सा कुन दशमिक पाव लोजरे

0: 你过，
1: 慢点慢
0: 点。应不需要那帮内。
1: 嗯，
0: 哎，姨妈，都大大嘞。
1: 还没吧？
0: 都用我啊！马啥子胡麻了？这里见我呢。
1: 爷，我那到你家这个呢？姨夫我，那不胡麻了路边呢？那个哈呢？一路就是的，哈。
2: 可以吗？一路就脱开个，
1: 一路
2: 那些输的不要了咯。
1: 嗯。
2: 三郎路个路的个对呢？哎呀，啥不个路一趟了么？
1: 啊啊，会会会，路一那趟没，路一那趟没。哎呀，不的呢，鬼说鬼的吧，你一路怎么个些？啥偷了个多的呢？啊，都那个些的，啊，弄得大大，弄得肯定不没样都很好的过。
0: 嗯。
1: 哎，有你，个丫头的弄你，还那里个的偷不偷的还吧？不好，弄不咋不偷不个路的，不然你弄不？哈。
2: 啥偷不不个样鬼呢？路的。
1: 哦。
2: 弄爱的还真是。Bun sanaru re halae irujare lapoi yerum tare samon chute
1: ado ibungo nangne angang che lari khara tak piyo a football ge maram dine football ge maram da jaga chana ba a ima dine imongi thabe angang khara loi chaluge aina di khara ta amma bane ba ado nangne ne matung ta bas dine phajana ta tak pi horo nangge chapje ne ibungo ko
2: hoi hoi tak pi rage kra yo ra man tam do
0: football hai ba masana se lam khuding makna pamna ba masana ni hai ba si yore ado wa mata hangki ge
2: hangune kaino nang khangning do hangune
0: football sana ba yam hai ba pithvi ge oi ba ne mamin chat pa misak lai bra leira di mamin do kai kau ge da
2: leina kari lai tani ge ado bro nupa do ki mamin pele kawe pele
0: oho pele kawe hai ba ai shu ta kr gum di taure ozana no ma class ta hai gi bane ma di laipu ni hai e football sana ba da ma bu na bi ne ba mi ga an da lai ti hai
2: sume ma sana ba hai ban pa ni ma gi pok na pham lam dam di ne brazil ni brazil ko english nga ma chama pal ni phu 1940 october gi tang kul hum doi da ma po e ko pele se ma gi matam da अफाव फुटबॉल सानरोय कैमरूम थोरकी महागना ब्राजील नेशनल टीम द याउदुना अहुम लक वर्ल्ड कप चैंपियन फंकी
0: ओ ओ फुटबॉल मैच असे कमाइने सानगे ददा
2: अ फुटबॉल गे अर्थ दिखंगि दना ना फुट हाइबदि खों हाइबनि खों न बॉल सानब हाइबनि क अ से आइने फजन लिरके
0: होय
2: नंगने नबु दिसंग न ताउको
0: होय ददा
2: नंगने याम न कुप न खंग्र सोबा टीम अनिने सानबनि खों ना बोल दु काउ रगा गोल चन गद बनी गोल मसिंग याम न चन मंग अम बदु ना माई पाक पा हाय बदु होय दरी नि
0: अदो दादा फुटबॉल साना फम लम पा दु कया याम न पाक चाउ बगे
2: फुटबॉल साना फम लम पाक तु याम द्रब द मीटर मई फुतरा 90 मीटर्स को दगिना मीटर चाम ग कुन सांगनी 90 मीटर्स दगिना 120 मीटर्स पावा सांगदो बा पाक पना याम द्रब द मीटर निफु मंगा 45 को नतगना यामलबदा 90 मीटर्स ओइगदोबा खंगरा
0: खंगनी अदोददा गोल पोस हाइरिसिना कैनो
2: सानाबुंग अदुकी अकोइबदो अंगोबा अमना हाइबदि सुनु ओइरबसु अंगोबा इंगान गान न उबा मियामन हेक्टो उबमोंगा येकनी नाकल अनिमक्ता गोल चनबे यानना ब गोल पोस युंगलगा जाली खाजिन दुना निंगथि जन सेम साधुना थमगनी मसिद बोल दु काउबद संखि दुना मनुंग संख्रबदि मदु गोल चनबा हाय दु कवे क्वा अदुगा युंगी बदु बुना गोल पोस कवे खानी क्वा
0: खांगनी येददा अदुआ वा मतम ग हंजखि गे माइका येनी मकी साना रोइना ने गोल दु चमाना न चलबदि करी तौगनी
2: नकलानी मकी सानरोय सिंगना गोल चमाना न चलबदि करम नाकन गि टीम न ngammi हायबा खांगरोय अदुना नाकल अनिमकि सानरोय सिंग दुदा मतम खरा हापकान दने अमुक सानान गनी मदुदा हान गोल चनब ngamba नाकल अदुना माई पाकले हायदुन लोगनी सुमाइन सानबगि नियम लै को
0: ओ अदुदि आम नु गाइजा निना आइदि नांगै खंगो खंगो दे अदु ददा वा मतंग हंगे नाकल अनिमकि सानरोय कया कया लैगनी
2: माइकै अनिमकि सानरोय तारा माथोय लैगनी
0: ओ अदुदि अकंगनब मसिंगनि ने सानबदा शोप खोट पे याव रग दि कमाई तो दुबा
2: अ दुगी सु महुत सिंदोक सिजिन तो नना पछाना रोय खरा अदम रिजर्व प्लेयर है दन को अम थमी
0: ओ अदु ओइ दि फैदना सानबगी मतम दि पुंकया ओइ नि ददा
2: 90 मिनट ओइ गदो बा को

0: बगा छाना गे क्वा
1: याम नुंगाई बुआ मग हाई बिगे ने भारत की नुपी की फुटबॉल टीम में सिकी ममिंग याम न फजबा मत थोन गरे हो जिकती
0: ए कई हाई न थोली नो दादा तानिंग है हाई बियो
1: हाई बियो रा द ब्लू टाइग्रेस हाई न थोन गरे
0: याम फजे ये द दिया
1: ब्लू टाइग्रेस क्वा फजे क्वा ममिंग से
0: फजे ये दादा
1: हाँ अदो नंबो फुटबॉल की मरम द खाना गई खांग द्रो
0: दादा ना ताफी बदगी खाया दिखांगे
1: ये कहीं तो वार नू आइंगों द की नंग न तुम है न खांग कनी हाउ जिक्ती नंग अंगांग वाई दी खरा सौरा कांडा तुम खंजर कनी

0: शिक्षण भी गदा नापी मांगन बंगम्बा मसल सुन या और साथी दी संगी मको की एक पनी कौबीरगनु लौमी सिंगे मरु साथी
1: मणिपुर की अमत नायरबा नाग एग्रीडेटेड लॉ कॉलेज ओरिबा रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनामदा एकेडमिक सेशन लिसिंगनी कुंतरुक कुंतरे की ओइना एलएलबी 3 ईयर कोर्स द मिंग चन्नबा दरकास कौरी ग्रेजुएट लॉयरब सिंगना अगस्त 13 फाउबदा मेंशन लब फॉर्म एकेडमी असिदा पिसिन बयागनी एप्लीकेशन फॉर्म अमसुंग अकुपमरोल रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनामदगी खंग बयागनी
2: एक्जोटिका एक्जोटिका लौमी की अनौब याइफ पाउजेल एक्जोटिका तिलहाक हिदाक असिना मना ककपी मना चिकपी मना कोंछिनबी मरा पुंबी उसिंग जामानबी मरिक उतों नुंगी वैकुप मानबी अमदी अतै अतै लौमी नमी पाइनरीब तिलना कयादगी नाथोप गमी हाइरिब तिलहाक हिदाक असिना लौफोंबु क्वीना तिल सिंगदगी नाथोपद नत्तना फौबुसु मपांगन कलखनम गमी सावोंगसु फजहली सिजिनबियु एक्जोटिका अदोमगी मनाक नकप तिलहात हिदाक योनफम सिंगद फंगली एक्जोटिका एक्जोटिका एक्जोटिका
3: Gold Coin GR. Lomi ki yai phenna ba GSP Crop Science Limited na. Lomi ki phok thok pu chada tara dagi tara manga phau me hengat han bangam laba. Acha uba khudol am tambira re. Gold Coin GR. Gold Coin GR de yau riba seaweed extract, humic acid, amadi amino acid na. Hau pam bi bu masani tina pokhali, kaitin, amadi kiolin asina. Hau maru nin tina chang bangam ali, hau ham chelande. Lo sangam amada supna ki kilo hum khat chai thok piyo. Gold Coin GR. Fang fam AR Agro kai sampat amadi adong nak naba til
4: सिंजमई चिंगा मखों चोंथाम लेकाइदली बीरंबी चोंथाम रानी ने लेखिदबा चही फारकपसिदा इमुंग मनुंग अमदी मचा मनाउ ओइबसिंगना नुसी ननिंग सिंगली ममाना एखोय बुथादोक्तुना चटखरबसु एखोयगि थमोइददिङासि फाउबा ममाना एखोयगि दमक तौबिरंब थबकसिंगदो निंगसिंगदुना लेरे ममागि आत्मासु ईश्वरगि खुयाखादा इंगन चिकना शांति ओइन लेरसन
5: Yuki Puntadir, Sangai Channel, Konjel Nasomda, Hello Manipur Health, Live Phoning Program, the Tamsari, Thyroid Ki Matho Kairakpa. Expert one and said, Bigata Bar, Regional Institute of Medical Sciences, Rimski, Department of Endocrinology Ki Professor, Dr. Laimayum Romesh Sharma, Akasbani Imphal, Housing Nomidangi Puntadir Makhaitare, Manipurita Pauta Virasi.

0: आकाशवाणी इम्फाल मतम की वाफम दा हुसिक ताबिरसी बी बी जी रामजे एक चनहन बहौखिबा अहिब इबोयाई मखुमन सीनियर जर्नलिस्ट
1: हाने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए लेंगा की मतम दा सेम दुना चनरंबा खुंगंगी मियाम दा सही अमद नुमी चामनी सुक्सोय सोयदना खुसुमल फंगब थबक सुबगी एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक एमजी नरेगा अदो हौजिक लेरिबा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी न लुसिंगबा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए लेंगाकना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बी बी जी राम जी एक् लिंग कुरमान महुत सिंधुना चलब थागी लेबासीगी स्टेट यूनियन टेरीटोरी खुदिंग मक्ता चत्नब हौहनख्रे अनौब स्कीम आंध्र प्रदेश की तिरुपति पांथोप थौरम यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान हौदोखिबनी स्कीम हौदोपगी थौरम सिंह स्टेट यूनियन टेरीटोरी पांथोनखी मणिपुर की ओइनासु इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमसांग असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग चनबा सलाम थरोइजम द लैबा इको टूरिज्म पार्क ता से मिनिस्टर युमनाम खेमचान हौदोखी हाना एमजी नरेगा की जॉब कार्ड पाइब सिंगदा नोंमगी खुसुमल लुपा चनी मैफुहुम दोय फंगहलंबा अदु अनौबा बी बी जी राम जी की मखादा हौजिक लुपा चहुम फंगहलगनी अदुगा थबक सुबगी नुमित मसिंगसु चामदगी चामकुनमंगादा हेंगेटलगनी यूपीए लेंगाकना मसीगी फ्लेक्सी प्रोग्राम अमा ओइना महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम हौदोक्तुना लेबा असीगी स्टेट अमसुंग यूनियन टेरीटोरी खुदिंगमक्ता चनरखी स्कीम पार्लियामेंटना कुमजालिसिंग अनी मंगागी ऑगस्ट थादा पास तौदुना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हाइना खंगनरकलबा मतुंगदा कोन्ना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा हाइना मिंग ओलखिबनी एक्ट असीगी मखादा पाइखटपा नेशनल रूरल गारंटी स्कीम असिना कुमजा लिंग तरुक की फेब्रुवारी अनीद आंध्र प्रदेश की अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन लेब बंदलापल्ली खुंगंग प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने हौदोक्तुना चनरखी स्कीम हौरपदा तोंगान तोंगान स्टेट कुंतरुक की डिस्ट्रिक्ट चनी खक्तदा चनरखी डिस्ट्रिक्ट चनी खनगटपदा मणिपुर की ओइना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट यावरखी इंग लिंग तरुक की अप्रैल तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पांथोप थौरम चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंह तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हौदोखी अनीसुब तांकक की ओइना तोंगान तोंगानब स्टेट सिंगदगी डिस्ट्रिक्ट चाम तरुक खंगेटपदा मणिपुर की चुरासानपुर चांदेल डिस्ट्रिक्ट यावरखी तुंगद कुमजा लिंग निपान की अप्रैल स्कीम लेबाक असीगी डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक चनरखी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की महुत सिन्नब पार्लियामेंट पुथोरप बी बी जी राम जी बिल कुरमा लोकसभा दिसंबर तरानिपानदा राज्यसभा दिसंबर तरामापन पास तौखी दिसंबर कुंदा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अयाब पीदुना बिल एक्ट उन्दुना चनब हौरखी लैबाक असीगी खुंगंगी मियामदा चाही अमदा नुमित चामा कुरमा सुक्सोय सोयदना खुसुमल फंगब थबक पीगदब

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

बस दो लफ्जों की तो होती है दिल की कहानी जो कहनी भी इतनी आसान नहीं होती है। The Great Gambler से ये गीत सुना अमिताभ जी और आशा भोसले की आवाज में। दोस्तों जब हम किसी को चाहने लग जाए ना तो उनसे मुलाकात तब तक पूरी नहीं होती जब तक दिल की बात ना कह दे, और अगर हम नहीं भी कह पाते ये दिल की बात तो भी इसका अलग ही मजा है, एक अगली मुलाकात का बहाना ढूंढने लगते हैं, इसे ही तो प्यार कहते हैं।

मुकेश और आशा जी की आवाज तुम्हारी कसम फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। जब तक मिलन ना हो जाए तब तक जैसे बेचैनी सी छाई रहती है, अगर ये मिलने की चाहत ही ऐसी होती है दोस्तों तो सोचिएगा जब हम मिल जाए तो क्या दिल को चैन मिलता है? जी नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि ये मुलाकातों का सिलसिला बस यूं ही चलता रहे और हम यूं ही मिलते रहें और बातें कभी खत्म ना हों।

0: को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

कविता कृष्णमूर्ति की और नितिन मुकेश की आवाज में ईश्वर फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज हर श्रृंगार में हसरत तो थी कि उनसे ख्वाबों में मुलाकात हो जाती, मगर वो तो अपने साथ हमारी नींद ही उड़ा कर ले गए। दोस्तों, वो तो बेशक आपकी नींद उड़ा कर ले गए होंगे, लेकिन जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि रेडियो ऐसा माध्यम है जिसमें बेशक हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी बातों के जरिए या गीतों के जरिए हम एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अगला गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है लहू के दो रंग। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार 11:10 पर। आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट। पुनः प्रसारण के बाद ठीक 11:40 पर मैं अर्पणा आपके साथ एक बार फिर से रहूंगी लेकर हाजिर गीत मेरे मनमीत। फिलहाल आप इस गीत का आनंद लीजिए और 11:00 समाचार जरूर सुनिएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या

0: से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk." He said, keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and at the centre. The Prime Minister said today Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions. He highlighted that a transparent, technology-driven examination system, stronger anti-paper leak laws and tough action against exam mafias is important to protect students' hard work. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CCS, to review the situation in the context of ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments. Addressing the meeting, Mr. Modi called for a unified and coordinated mechanism for regular monitoring of all developments to ensure expeditious implementation of measures safeguarding citizens' interests. He also directed to establish a mechanism to provide timely information, emergency assistance and counselling to seafarers and their families. Delhi government has said that Delhi police will not take any legal adverse action against individuals who participated in the NEET UG protest demonstrations in the national capital, but those with criminal backgrounds will have to face action. The Home Department said that with regard to arrests or detentions, if already made in these cases, the process for reviewing the arrest and releasing the arrested persons will be undertaken expeditiously. It said that the Delhi government does not propose to take any further adverse action against the individuals involved in the protest, and the matter shall be treated as closed without any future proceedings on this account. The Supreme Court today directed the Delhi government to provide proper medical treatment to persons injured by the alleged use of pellet guns during recent students' protest in the national capital. The three-judge bench led by Chief Justice of India, Surya Kant, was hearing a plea alleging the use of metallic pellet guns on students protesting at Jantar Mantar and other parts of Delhi. During the hearing, the bench said that police rules permit the use of pellet guns in exceptional circumstances and said that unless the rules themselves are challenged, the use of such weapons cannot be considered illegal. And Neeraj Chopra has qualified for men's javelin finals in the Commonwealth Games at Glasgow. Javelin throwers Rohit Yadav and Yashveer Singh have also entered the finals. Earlier, India scripted history in para-athletics, securing a historic 1-2 finish in the men's 100-meter T47 final as Dilip Mahadugavit won the gold and Mohammad Basil claimed the silver last night. India holds the 8th spot in the Commonwealth Games medal with 15 medals, including 3 gold, 9 silver and 3 bronze. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ पुनीत जैन पुनीत जी नमस्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: धन्यवाद मनोज जी
0: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी
2: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद मॉडस्ट गेन्स सेंसेक्स राइजेस ओवर 250 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स अबव 24,300 Most Asian stock market indices close in the negative zone and global crude oil prices fall.
0: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 250 अंक से अधिक उछला निफ्टी 24,300 के ऊपर बंद हुआ एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में से अधिकांश घाटे में रहे और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम घटे

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं घरेलू बाजार से हालचाल का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर तेजी रही, हालांकि मामूली बढ़त के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 274 अंक यानी 0.35% बढ़त के साथ 77,928 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 24,317 पर बंद हुआ. हालांकि विस्तृत बाजारों में गिरावट देखने को मिली. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% नीचे आकर बंद हुआ. स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग 0.6% की गिरावट आई.
0: Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. Sensex rose by 274 points, 0.35%, to close at 77,928, while Nifty added 67 points, or 0.3%, to settle at 24,317. However, in the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dropped over 0.3%, while the small-cap 100 index fell nearly 0.6%. Earlier, the markets opened on a subdued note as rising crude oil prices and escalating tensions in West Asia weighed on investor sentiment. After remaining range-bound for most of the session, both the benchmark indices edged higher during the final hour of trading.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर, तो सेंसेक्स में सम्मिलित 30 में से 15 कंपनियां आज लाभ में रही हैं. और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली जो प्रमुख कंपनियां रही उनमें मारुति सबसे ऊपर है. इसके शेयर 1.8% लाभ में रहे. महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1.7% से अधिक का मुनाफा हुआ. रिलायंस के भाव 1.4% से अधिक ऊपर उठकर बंद हुए. उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही अदानी पोर्ट्स, जिसे 3.3% का नुकसान हुआ. इंडिगो के शेयर 0.9% नीचे आ गए. बजाज फिनसर में 0.8% की गिरावट हमने देखी.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 16 out of the 27 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, realty dipped 2.1%, housing finance dipped 1.3%, and mid-small private banks' quality tilt fell 0.8%. In contrast, auto rose by 1.6%, energy advanced over 0.7%, and consumer discretionary gained 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,630 companies declined, 1,601 companies advanced, and 176 companies remained unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर, तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के तुलना में रुपया आज 3 पैसे कमजोर हुआ. 95.68 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. पुनीत जी, बाजार में आज कुल मिलाकर यदि हम देखें तो प्रमुख सूचकांक तो बढ़त में रहे हैं, लेकिन विस्तृत बाजारों में निफ्टी पैक का 100 और यानी स्मॉल पैक और मिड कैप दोनों में हमने कमजोरी देखी, क्या दर्शा रहा है ये बाजार?
2: मनोज जी, देखिए बाजार जो है बहुत ही मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग

0: अभी खड़ा है, कई कई प्रकार के फोर्सेस इस वक्त शेयर मार्केट के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो कंपनी जगत के नतीजे आए हैं, कंपनियों के नतीजे आए हैं, वो कुछ उम्मीद से बेहतर हैं, कुछ क्षेत्र में हम देख रहे हैं थोड़ा गिरावट है, लेकिन करीब करीब वो अच्छे प्रदर्शन है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के। हम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो वहाँ हम बड़ी उथल पुथल देख रहे हैं। जो एक AI ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेड था, जिससे जापान, कोरिया, और ताइवान जैसी मार्केट्स में बहुत बड़ी तेजी चल रही थी, वहाँ अचानक बहुत गिरावट आ रही है, तो उसका प्रभाव भारतीय बाजारों पर पड़ता है, FIIs के रुख पर उस पर प्रभाव पड़ता है। और साथ में तो ये जो वेस्ट एशिया में आप वॉर का माहौल देख रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, कुल मिलाकर यदि मैं ये सब मिलाता हूँ, और ये सब बड़े फैक्टर्स हैं, ये कोई छोटे मोटे फैक्टर्स नहीं है, इससे बाजारों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो हमारा प्रदर्शन भारत का अच्छा रहा है, पर्टिकुलरली जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, क्योंकि IT क्षेत्र की कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वहां पर हमने बहुत भारी गिरावट देखी थी पिछले दिनों, कुछ अब हमने पिछले यदि एक या दो सप्ताह को देखें वहां बाइंग हुई है, और 15-20% उछाल भी आया है बड़ी IT कंपनीज के शेयर्स में। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भारतीय बाजारों से काफी बड़े पैमाने पर उन्होंने पैसा निकाला था, हम वहां पर थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं, वहां पर FIIs के द्वारा बाइंग दोबारा से शुरू हुई है, अभी लार्ज कैप्स में कर रहे हैं, लार्जली IT स्टॉक्स में हमने देखा है थोड़ी बाइंग। तो मुझे लगता है कि ये सब फैक्टर्स हमारे सामने हैं, और कुल मिलाकर जो असर आ रहा है सामने वो अच्छा आ रहा है। लार्ज कैप्स में बाइंग हो रही है, मिड कैप्स में जैसे आपने पहले कहा कि थोड़ा वहां पर प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि काफी ज्यादा शेयर्स बढ़े हुए हैं, तो काफी एक मिला जुला रुख है अभी बाजारों का।
1: Well, we saw the Nifty Auto Index go up by 1.6%. And typically, when you're looking at a purchase of a passenger vehicle, of course, you have, you know, other types of vehicles as well in the computation of the Nifty Auto. What do you think in terms of sales and the purchasing power of India? And this is in the context of the central bank also forecasting that for the financial year, they are projecting a growth of 6.6%, and this is amid all the geopolitical tensions and what's happening in West Asia, how we are directly affected by the movement of crude oil and gas through the Strait of Hormuz.
0: So Arjun, interestingly, automobile industry is taken as a bellwether for the larger economic trends. In India, we have seen that the passenger vehicle sales have been quite robust in spite of all the pressures that you mentioned.
1: And let's not forget that interest rates also play a very important role.
0: Interest rates are important. We recently had the FTA go into application vis-a-vis UK, and EU FTA is also coming into effect shortly. And in spite of it, we have seen that the purchasing power of the common Indian has been quite robust, and we have seen good sales in white goods. We have seen good traction in terms of vehicle sales, particularly. See, today, of course, is the end of the month in a sense, and in the next 2 days, we will see the sales figures, because the automotive industry declares their monthly sales figures every month, end of the month. So by day after tomorrow, we will get the first indications of what happened in the month of July. My guess is the numbers are going to be quite good. In fact, they may be surprisingly good, and which just shows the kind of strength that the Indian economy has, because like I said, passenger vehicles are the top of the heap, you can say, in terms of purchasing power of the consumers. So my guess is that the numbers today tell us that the rise of the automotive index tells me that the numbers are going to be quite good when we see them next week.
1: So the central bank's monetary policy committee has left the repo rate at unchanged, 5.25% with a neutral stance, and there's a forecast that for the financial year, the CPI inflation is going to be 5.1%. How do you see Nifty Bank right now? Because up until now, it's been quite bullish if you look at the figures. How do you see their corporate earnings, fundamentally speaking, PSU banks and private banks?
0: So, interestingly again, in fact, in the last few months when the IT sector index was taking a hit and several other major sectoral indices were taking a hit, banking sector stocks were doing very well. We saw the index went up, we saw the many of the large PSU banks and private sector banks, they were doing well. NBFCs were doing very well. And then suddenly we've been seeing a lot of profit booking in private sector banks by the foreign investors. And they kind of came down. But what the numbers which came out, again, like one of the top private sector banks came out with very modest numbers. And we saw a very sharp fall, almost 10% fall in one day. So, and some of the smaller banks, private sector as well as public sector banks, they have been coming out with very good numbers. So again, I think the picture here is mixed. We can't say that banking is going through a certain kind of a trend right now. We see the larger banks, particularly private sector banks, not doing that well. We see a lot of traction in the smaller banks. It could be a reset of the trade that we have seen in the past many years.
2: Puri ji, yahan par hum aapka dhyan aakrishit karna chahenge, khas taur se aapne kaha ki companies ke parinam आशा थी, यानी कह लें कि हम जो उम्मीद कर रहे थे उसे कहीं बेहतर क्षमता निकल के आ रही है और ऐसे ही कुछ आंकड़े वित्त मंत्रालय ने अपनी आर्थिक समीक्षा कह लें इस महीने के लिए जुलाई के लिए जो जारी की है उसमें दी है कि विपरीत स्थितियों के बावजूद हमने आयात निर्यात के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है. कुल मिलाकर क्या जता रहा ये भारतीय जो शेयर बाजार है उसकी भी स्थिति, हालांकि ठीक है अभी हम कम हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो हमारी वृहत आर्थिक पैमाने हैं वहां पर ये सब आंकड़े, एक और कंपनियों का प्रदर्शन, दूसरी ओर आर्थिक समीक्षा के जो उम्मीदें जताई गई हैं वो क्या दर्शा रहे हैं?
0: देखिए मनोज जी, बहुत ही, मैंने जैसे पहले कहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं क्योंकि कई प्रकार के अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग ट्रेंड्स इस वक्त एक साथ हमारे अर्थव्यवस्था को प्रभाव डाल रहे हैं. और अगर हम देखें तो जैसे जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिलीज किए वो दिखाते हैं कि भारत की जो कंजम्पशन है, अगर जीएसटी डेटा देखें हम, अगर हम दूसरे आंकड़े देखें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बहुत बढ़िया नंबर्स आए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दर्शाता है. अब वहां पर उम्मीद नहीं थी, हमें लगता था इन्फ्लेशन है तो शायद वहां पर थोड़े कंजम्पशन कम होगी या प्रोडक्शन कम होगी, ऐसा नहीं हुआ. तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि बहुत सारे वेरीड फैक्टर्स हैं पर जो नेट पिक्चर आ रही है वो एक बहुत ही स्ट्रांग इकोनॉमी की आ रही है. और मुझे लगता है कि जैसे ही ये थोड़े संकट के बादल छटेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर, मुझे लगता है भारत की इकोनॉमी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट बिग जंप इन द ग्रोथ.
1: Puneet, whenever we talk about that jump in tangible terms, you know, we look at the market and the FIIs have been buying heavily into the futures market. That's what we saw in the data today, the F&O market. Is that reflecting what's happening in terms of core industries? You mentioned about the index for industrial production, manufacturing has picked up. We can also see that in the PMI data. So looking at June and July, you also have the services index, the ISP, that has come out. Do you see a bull run coming into the market despite what's happened geopolitically?
0: So Arjun, if you ask me about the markets, my guess is that markets are consolidating at the present. We have not seen very large moves in the market. We see some small moves on a daily basis, but my guess is that post this consolidation in over the next 2 months, as we get closer to October, November, the busy season of the economy, my guess is we'll start doing very well. If I really have to put my money on something, I'd say the bull run in Indian markets will start somewhere around October, November. And I think I'm expecting a very significant move in the market in the next 6 months to 1 year.
1: Finally, if you look at the rupee to the dollar, the RBI says that the rupee is undervalued. FCNR deposits have in fact gone up, and we've seen that, we've taken that up in the last 2 days as well. But if you just look at the report here by the Ministry of Finance, so they're saying that because of what's happening in West Asia and the rising prices of crude oil, that's going to affect the currency and of course our other metrics in terms of the fiscal deficit and the current account a deficit. How do you see India managing that?
0: So interestingly, I think this was a masterstroke by the finance ministry when they attracted, no, and they gave incentive for FCNRB deposits to be attracted by NRIs in India. And this is, we've seen this scheme is open until September, but my guess is that we are going to come out with some huge numbers of foreign exchange mobilization through the FCNRB scheme. And it could be a real surprise because, and the whole concern about India's depleting foreign exchange reserves and the pressure on the external accounts, I think that will be really put behind us. It's really a masterstroke. The numbers we'll get, of course, by end of September. My guess is it will be upwards of $50 billion, maybe more even.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए। कंपनी के अनुसार वार्षिक आधार पर संचालन से प्राप्त समेकित राजस्व 27% बढ़कर 57,533 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 33.6% बढ़कर 5,455 करोड़ रुपए दर्ज हुआ।
1: In more results, Bajaj Finance Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The firm's consolidated net profit increased by around 27% to 5,986 crore rupees on an annual basis. Bajaj Finance's net interest income increased by 23% year on year to 12,571 crore rupees.
2: आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार जहां पर आज कुल मिलाकर गिरावट देखने को मिली, हालांकि कुछ बाजारों में निवेशक ने खरीदारी भी की। दक्षिण कोरिया का कोस्पी बिकवाली के दबाव में 1.2% से अधिक नीचे आ गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.7% घाटे में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.6% की गिरावट हुई। ताइवान का ताइएक्स 0.2% से अधिक नीचे आकर बंद हुआ। इसके विपरीत जापान में खरीदारी तेज रही और निक्केई 225 सूचकांक 0.7% लाभ में रहा। हांगकांग के हिंगसिंग सूचकांक में 0.2% के आसपास की वृद्धि हुई। इस बीच बैंक ऑफ जापान की दो दिन की नीतिगत बैठक आज शुरू हो गई।
1: पुनीत, लॉट्स हैपनिंग इन द एशियन एंड द यूरोपियन फ्रंट। कॉस्पी the index in South Korea was undergoing a steep fall. Circuit breakers were activated. Today it fell by only 1.2%. How do you see the AI boom and the fall in chip stocks? Do you see that continuing? Do you see that being arrested now? And along with that, Bank of Japan, what are they deciding?
0: So very interestingly, Arjun says that Kospi fell only 1.2% today. So normally, a fall of 1.2% would be a big deal for the markets. But given the history of Korean markets in the past few days, where it falls by 5, 7, 10% every day and rose by 5, 7, 10%, very volatile. So of course, 1.2% seems like a calm day for the markets, unfortunately. Korea, of course, is going through this. It's a very concentrated market. There are only 5, 6 large companies which constitute 60-70% of the index. And most of them are dependent on this AI trade. We've seen a very sharp fall in all AI related stocks, and be they be in Korea or in Japan or in Taiwan, with largely the Asian trade, and in Nasdaq, of course, in the US. It's been very volatile and we have seen very sharp correction. My guess is that now we will see some kind of a fair valuation return to the markets. You mentioned Japan. See, Japan has this tremendous issue with currency depreciation because yen is continuously falling against the US dollar. It leads to inflation, higher inflation in Japan, and therefore they will need to raise interest rate.
1: And carry trade also.
0: And it really hurts because if your currency is depreciating, the carry trade will inflict losses on all those who are borrowing in that currency. So my guess is that Bank of Japan decision will come tomorrow morning. They could raise rates, and that would mean again another shock to the world economy, because Japan provides a huge amount of liquidity to the global markets. So it's still work in progress, but I guess we'll wait and see how it goes.
1: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices reversed earlier gains today. Brent crude was trading 0.8% down at $90 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% down at $83 and 83 cents per barrel. When reports last came in, oil prices going up, even though the story is saying that it went down today in intraday trade, looking at the time difference as well. How concerned are you with what's happening in West Asia? You can't play it down. And on the flip side, even when we are importing oil from Russia, which is unsanctioned, now there is a Russia sanction bill which is being debated in the US Senate, where they have the power, the president would have the power to impose up to 100% tariff, both on India and China.
0: So, of course, for India, it's a difficult situation because we need to import energy prices. We have done well in terms of diversifying our sources of imports. So, there's no shortage of oil, but oil has become very expensive for us. So, it is putting a lot of economic pressure on us. While there's no shortage, we can still... but we're still paying much more prices for it, and we would like to oil to be energy to be cheaper for our economy. So clearly that is a challenge for us. I don't think we can wish it away. It's happening right now. Over the next 6 months, 1 year, maybe things will improve, but right now energy prices, crude oil prices, are a big challenge for India, and I don't see them going down in the near future. I think they will stay high given the political nature of this right now.
2: Aiye khabron ka silsila aage badhate hain. देश में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सोने की मांग वार्षिक आधार पर 6% घटकर 131 टन के आसपास आ गई। विश्व स्वर्ण परिषद की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। देश में इस दौरान स्वर्ण आभूषण की मांग 15% घटकर 75.1 टन के आसपास रही। गौरतलब है कि सोने की मांग में यह कमी कई कारणों से आई है, इनमें कस्टम शुल्क अधिक होना, साथ ही इस अवधि में सामान्यतः सोने की खरीदारी कम किया जाना, और ध्यान देने वाली बात यह भी कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सोने की खरीदारी घटाने की भी अपील की थी। कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे सोने की मांग घटना?
0: मनोज जी, देखिए, भारत करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए का सोना हम हर साल इंपोर्ट करते हैं, तो यदि वहां पर हम 10-15% इंपोर्ट कम कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट करी, मुझे लगता है बहुत बड़ी सेविंग्स होगी हमारे लिए। वो ट्रेंड चल भी रहा है तो वो अच्छा लगे, पॉजिटिव ट्रेंड।
1: मूविंग ऑन टू द बुलियन मार्केट, इन द इंडियन बुलियन मार्केट 24 कैरेट गोल्ड वाज ट्रेडिंग 0.4% अप एट 1,43,340 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.6% up at 2,19,580 rupees per kilogram a short while ago.
2: आइए आपको लिए चले MCX, वहां अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.5% से थोड़ा बढ़कर 1,42,582 रुपए प्रति ग्राम पर चल रहा था। वहीं सितंबर अनुबंध की चांदी 0.4% बढ़त के साथ 2,18,303 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी, हम आपको कार्यक्रम के समापन में बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: धन्यवाद पुनीत जी।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end with modest gains. Sensex rises over 250 points. Nifty settles about 24,300. Most Asian stock market indices close in the negative zone. And global crude oil prices fall. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं। वक्त हो गया है 11:41 और 10 सेकंड। तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे गीत के साथ। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में ये गीत होगा। फिल्म का नाम है वो 7 दिन। स्वागत है आप सभी का।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं। गीत के बोल संतोष आनंद के लिखे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है प्यासा सावन। ग्यारह बजकर 51 मिनट और 9 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड।

ग्यारह बजकर 55 मिनट और 14 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत आप सुनेंगे आशा जी की आवाज में। शहरयार के लिखे बोल हैं, खयाम का संगीत है, फिल्म का नाम है उमराव जान। इसी गीत के साथ गीत मेरे मनमीत से अर्पणा को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। जी हाँ, मोहब्बत, मोहब्बत की सबसे प्यारी बात यही होती है कि इसमें हर जवाब सीधा नहीं होता। कभी मुस्कान पहेली बन जाती है तो कभी निगाहें सवाल पूछती हैं और कभी खामोशी ही सबसे खूबसूरत जवाब बन जाता है। चांदनी रात में जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं या फिर एक दूसरे को याद करते हैं तो ये एहसास ही मोहब्बत की पहचान हो जाता है। प्यार की ऐसी ही मीठी शरारत, नोक झोंक और मुस्कुराहट जिंदगी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सबब बन जाती है। तो ऐसे में बात गीतों की ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए इसी श्रृंखला में हम और आप सुनते हैं ये सदाबहार नगमा शमशाद बेगम की आवाज़ में।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। कुछ यादें रात के साथ यूं चली जाती हैं जैसे कि वो कहीं ना कहीं दिल में बसी थी। जैसे जैसे चांद आसमान में ऊंचाई की तरफ जाता है, दिल भी किसी अपने के करीब और पहुंचने लगता है। उसकी यादें, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी खामोशी, सब सब याद आता है। सब कुछ फिर से जीने का मन करने लगता है। कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता, वो याद बनकर हर रात चुपचाप दिल का दरवाज़ा खटखटा देता है। तो अगर इस रात भी एक ऐसा ही कोई चेहरा अगर आपकी भी पलकों पर ठहरा हुआ है, तो ये सदाबहार गीत नगमा उसी एहसास के नाम। आइए सुनते हैं, फिल्म है पारसमणि, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला उसी दर के हो गए। फिर यूं हुआ कि गैर को दिल से लगा लिया, फिर यूं हुआ कि गैर को दिल से लगा लिया, अंदर वो नफरतें थी कि बाहर के हो गए। तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला उसी दर के हो गए।

जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है। उसकी बातें मुझे खुशबू की तरह लगती हैं, उसकी बातें मुझे खुशबू की तरह लगती हैं, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है। और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, बात इतनी है कि वो मुझसे जफा करता है, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है, जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा

तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गैर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास के पत्थर भी पिघल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पर आंखों से निकल जाते हैं। तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। मेघालय सरकार ने वर्नी हाट में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आधुनिक वायु शुद्धिकरण उपकरण लगाने का फैसला किया है। इस बारे में राज्य के मंत्री और जिरांग के विधायक सुस्थेनीज सोहतुन ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed with the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that the investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel and PMO, Dr. Jitendra Singh said this issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country. Mr. Singh also listed the government's effort to prevent paper leaks and to reform the education system in the country. He said, youth are a huge investment for a Viksit Bharat. Earlier moving the bill in the House, Dr. Jitendra Singh said that this bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country. Later, the House was adjourned for the day to meet again at 11 a.m. today. The Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 with the Lok Sabha approving it yesterday. The Rajya Sabha passed the legislation on Wednesday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment of up to 3 years, a fine or both. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CCS, to review the situation in the context of ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments. Addressing the meeting, Mr. Modi called for a unified and coordinated mechanism for regular monitoring of all developments to ensure expeditious implementation of measures safeguarding citizens' interests. He also directed to establish a mechanism to provide timely information, emergency assistance, and counseling to seafarers and their families. He also emphasized the usage of renewable energy sources in order to ensure energy independence. Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, for the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk. He said, keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and the centre. The Prime Minister said Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions. He highlighted that a transparent technology-driven examination system, stronger anti-paper leak laws and tough action against exam mafias is important to protect students' hard work and strengthen the foundation of a Viksit Bharat. Delhi government has said that Delhi police will not take any legal adverse action against individuals who participated in the NEET UG protest demonstrations in the national capital, but those with criminal background will have to face action. The Home Department said that with regard to the arrest or detentions, if already made in these cases, the process for reviewing the arrests and releasing the arrested persons will be undertaken expeditiously. Lok Sabha Speaker and Kota MP Om Birla, along with Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu, reviewed the progress of the Greenfield Kota Airport project. In a social media post, Mr. Naidu said that with a 3.2-kilometre runway capable of handling big aircraft, Kota Airport will be a gateway to enhance connectivity and investment for the wider Hadoti belt of Rajasthan. Neeraj Chopra has qualified for men's javelin finals in Commonwealth Games at Glasgow. Javelin throwers Rohit Yadav and Yashveer Singh have also entered finals. Earlier, India started history in para-athletics, securing a historic 1-2 finish in the men's 100-meter T47 final as Dilip Nahadu Gavit won the gold and Mohammed Basil Morsinganath claimed silver last night. India holds the 8th spot in the Commonwealth Games medal with 15 medals including 3 gold, 9 silver and 3 bronze. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। और चलिए आगाज करते हैं कश्मीर की कली फिल्म के इस गाने के साथ। रफ़ी साहब और आशा भोसले की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में सुनते हैं ये गीत।

तू भी पास हो तो दिल बेकरार अपना है, तू भी पास हो तो दिल बेकरार अपना है, कि हमको तेरा नहीं इंतजार अपना है। मिले कोई भी तेरा जिक्र छेड़ देते हैं, कि जैसे सारा जहां राजदार अपना है। तू पास भी हो तो दिल बेकरार अपना है, कि हमको तेरा नहीं इंतजार अपना है।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि उसमें मिलने वाला दर्द भी अपना सा लगने लगता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भरने की नहीं बल्कि उम्र भर महसूस करने की चाह होती है। जी हाँ, जब रात में खामोशी आ जाती है और ऐसे में दिल बस उसी एहसास को फिर से जीना चाहता है, उस एहसास को जिसने कभी मुस्कुराना सिखाया था और कभी तड़पना भी। शायद इसी मीठी तड़प का नाम इश्क है। तो चलिए सुनते हैं इस दर्द और इस मीठी कसक और तड़प को अपनी हसीन धुन में समेटे हुए इस दर्द की एक कहानी इस गीत के माध्यम से।

तुझ पर भी हो न गुमान मेरा, इतना भी कहा न मान मेरा। कुछ रोशनी शहर को मिली, तू जान है मेरी जहान मेरा। तुझ पर भी हो न गुमान मेरा, इतना भी कहा ना मान मेरा।

कोई चेहरा हुआ रोशन न उजागर आंखें, कोई चेहरा हुआ रोशन न उजागर आंखें, आईना देख रही थी मेरी पत्थर आंखें, ले उड़ी वक्त की आंधी जिन्हें अपने हमराह, आज फिर ढूंढ रही है वही मंजर आंखें, कोई चेहरा हुआ रोशन न उजागर आंखें, आईना देख रही थी मेरी पत्थर आंखें।

और इस गीत के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। रात सुरमई में 2:10 पर होगी हमारी आपकी फिर से मुलाकात, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। अजरबैजान के बाकू में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता है। महिला वर्ग के 57 किलोग्राम फाइनल में उन्होंने अमेरिका की एपेनेसा एलिसन से 6-0 से हार का सामना करना पड़ा। महिला वर्ग के 49 किलोग्राम में कामना बाबल ने कांस्य पदक मुकाबले में रूस की इरिना तिसदेवा को 2-3 से हराया। वहीं 73 किलोग्राम वर्ग में गरिमा ने स्पेन की पाउला वेनाइक्सा पेरेस को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed with the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties, such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of the convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track codes for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel and PMO, Dr. Jitendra Singh, said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." Mr. Singh also listed the government's efforts to prevent paper leaks and to reform the education system in the country. He said, "Youth are a huge investment for a Viksit Bharat." Earlier moving the bill in the House, Dr. Jitendra Singh said that this bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country. Later, the House was adjourned for the day to meet again at 11 a.m. today. The Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it yesterday. The Rajya Sabha passed the legislation on Wednesday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment of up to 3 years, a fine or both. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CCS, yesterday to review the situation in the context of ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments. Addressing the meeting, Mr. Modi called for a unified and coordinated mechanism for regular monitoring of all the developments to ensure expeditious implementation of measures safeguarding citizens' interests. He also directed to establish a mechanism to provide timely information, emergency assistance, and counselling to seafarers and their families. He also emphasised the usage of renewable energy sources in order to ensure energy independence. Prime Minister Narendra Modi has said, "Government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system." In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government

रात सुरमई प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं सुरभि और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और चलिए रात सुरमई का आगाज करते हैं इस गीत के साथ।

रात सुरमई प्रोग्राम में चलिए अब आगे आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

इससे पहले कि बेवफा हो जाए, इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाए। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। बंदगी हमने छोड़ दी फराज, बंदगी हमने छोड़ दी फराज, क्या करे लोग जब खुदा हो जाए। इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाए।

जब तेरी याद के जुगनू चमके, जब तेरी याद के जुगनू चमके, देर तक आंख में आंसू चमके। शर्त है शिद्दत एहसास जमाल, रंग तो रंग है खुशबू चमके। यकीनन मोहब्बत अगर दिल से महसूस की जाए तो सिर्फ

जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था। जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था। आते जाते हुए मौसम थे, जमाना तू था। अब के कुछ दिल नहीं न माना कि पलट कर आते, और सब देख रहे थे कि निशाना तू था। जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था। आते जाते हुए मौसम थे, जमाना तू था।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए अनुमति, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में 388 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता है। लवप्रीत मात्र 1 किलोग्राम के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए। उन्होंने स्नैच में 176 किलोग्राम वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम का वजन उठाया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed with the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel and PMO, Dr. Jitendra Singh, said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." Mr. Singh also listed the government's efforts to prevent paper leaks and to reform the education system in the country. He said youth are a huge investment for a Viksit Bharat. Earlier moving the bill in the House, Dr. Jitendra Singh said that this bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country. Later, the House was adjourned for the day to meet again at 11 a.m. today. The Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it yesterday. The Rajya Sabha passed the legislation on Wednesday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment of up to 3 years, a fine or both. Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said for the past several decades, every state government and the central government have faced a problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk. He said, keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and at the centre. The Prime Minister said Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions. He highlighted that a transparent technology-driven examination system, stronger anti-paper leak laws and tough action against exam mafias is important to protect students' hard work and strengthen the foundation of a Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CCS, yesterday to review the situation in the context of the ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments. Addressing the meeting, Mr. Modi called for a unified and coordinated mechanism for regular monitoring of all developments to ensure expeditious implementation of measures safeguarding citizens' interests. He also directed to establish mechanism to provide timely information, emergency assistance, and counselling to seafarers and their families. He also emphasised the usage of renewable energy sources in order to ensure energy independence. Delhi government has said that the Delhi police will not take any legal adverse action against individuals who participated in the NEET UG protest demonstrations in the national capital, but those with criminal background will have to face action. The Supreme Court has directed the Delhi government to provide proper medical treatment to persons injured by the alleged use of pellet guns during recent students' protests in the national capital. The three-judge bench led by Chief Justice of India Surya Kant was hearing a plea alleging the use of metallic pellet guns on students protesting at Jantar Mantar and other parts of Delhi. Lok Sabha Speaker and Kota MP Om Birla, along with Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu, reviewed the progress of the Greenfield Kota Airport project. In a social media post, Mr. Naidu said that with a 3.2-kilometre runway capable of handling a big aircraft, Kota Airport will be a gateway to enhance connectivity and investment for the wider Hadoti belt of Rajasthan. In Under-17 World Championships, Indian wrestler Nikita Seharawat settled for a silver medal, while Kamna Babal and Garima bagged bronze medals in the women's event in Baku, Azerbaijan. In 57kg category final, Nikita suffered a 0-6 defeat to Epsina of the USA. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त भारती और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का. आपका प्यार भरा स्वागत करती हूं मैं प्रोग्राम हमराही में. शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ.

सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, निभाए गए वादों से पहचाना जाता है। जब भरोसा साथ हो तो हर रिश्ता उम्र भर महकता रहता है।

दोस्ती में जब प्यार की मिठास खुल जाए तो हर मुलाकात यादगार बन जाती है। अपनेपन की यही खुशबू दिलों को हमेशा करीब रखती है।

जब मुलाकातों का मौसम आता है तो हर धड़कन एक नई गजल गुनगुनाने लगती है। प्यार की सबसे सुंदर यादें अक्सर इन्हीं हसीन लम्हों में जन्म लेती हैं।

जुदाई के कदम भले आगे बढ़ जाएं, लेकिन सच्ची मोहब्बत की आहट दिल में हमेशा गूंजती रहती है। यादों का सफर कभी नहीं थमता।

कभी एक छोटी सी मुलाकात भी ऐसी पहचान बन जाती है जो पूरी जिंदगी दिल के सबसे करीब रहती है। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से जाने जाते हैं।

कुछ रातें सिर्फ चांदनी की नहीं, यादों और एहसास की भी होती हैं। ऐसी रातें दिल के सबसे खूबसूरत ख्वाबों का संजो कर रखती हैं।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए छोड़ के जा रहे हो एक बहुत ही प्यार से गीत के साथ मुलाकात होगी 4:10 पर प्रोग्राम अरुणिमा में तब तक के लिए नमस्कार

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया पेपर लीक करने वाली गैंग देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग उनको बख्शा नहीं जाएगा ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है हम संसद में बिल लेकर के गए थे गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लेक्तुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई भूटान ने देश के विकास में भारत के महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान की सराहना की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में विरोध प्रदर्शन जारी है इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों पर की गई हिंसक कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए हैं कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर बुनियादी अधिकारों को मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं रोहित यादव

एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है अरुणिमा. जी हाँ, स्वागत करती हूँ आप सबका. और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम अरुणिमा की इस प्यारे से गीत के साथ. गीत है फिल्म राजपूत से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में. संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी.

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म हमदम से महेंद्र कपूर और सुरेश वाडकर की आवाज में, संगीतकार घनश्याम, गीतकार राजेंद्र कृष्ण।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है अरुणिमा और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म सूरत और सीरत से. लता मंगेशकर की आवाज में संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार शैलेंद्र.

0: अभी आपने गीत सुना फिल्म दूरियां से भविंद्र सिंह और अनुराधा पोडवाल की आवाज में, संगीतकार जयदेव, गीतकार सुदर्शन फाकिर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म अलग अलग से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार आरटी बर्मन, गीतकार आनंद पक्षी।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आपने गीत सुना फिल्म भैरवी से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में संगीतकार आनंद मिलन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है अरुणिमा।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म अनाड़ी से, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। संगीतकार आनंद मिलन, गीतकार समीर। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिखतू दोरजी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयले खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। पाकिस्तान के कोयला खदानों में हवा आने जाने का समुचित मार्ग न होने तथा निगरानी और सुरक्षा प्रणाली के अभाव के कारण अक्सर घातक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों पर की गई हिंसक कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए। कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर बुनियादी अधिकारियों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्रित महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूट स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।

जिस तरह मन मंद हवा झूले की गति देती है, उसी तरह सकारात्मक सोच हमारे जीवन को नई दिशा देती है। हर नई सुबह विश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश लेकर आती है।

अपने दिल की सच्ची पुकार को सुनिए। सपनों की ओर बढ़ाया गया हर छोटा कदम एक दिन बड़ी मंजिल का रास्ता बन जाता है।

हवा कभी रुकती नहीं, वह निरंतर चलती रहती है। जीवन भी हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, कदम आगे बढ़ते रहने चाहिए।